0: نوديها كم ميجا هاتس تبقى هي فعلا.
1: ए मावेस सुट्टा लाफिंग
2: आहार में सुट्टा लाफिंग
3: ए लिस्टो का मावेस ही मना ला
4: अमील ला फैसा आंदा गें अमील ला हाशिंगड़ा गेल्लुं दिरुमा की किहा मोय कमे ए में मावेस सुट्टा लाफिंग
5: दुम फाई आहार में गे हाथुरे दुम फतु के इस्तेमाल कुरुम के साबुन दिमावा सिही मसल तो गा आहार को हैम मिलियन वुरे किना मी हु मरुआ कमा ताफास हिसाब तकुन दक्का फस नुजेही अवह दुमफतुगे इस्तियो माल कुरुं हुट्टा लमाहिंगा
6: मी अहमद आमिर

0: ऐ मेरी हमरथ मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: لاوي كفه لاوي. मैं उसके लिए मर चुकी हूँ।
1: वो भी आपकी यादों में पल पल मर रहा है।
0: तो कह दो उसे कि उन यादों की चिता बना के जला दे।
1: उस चिता से उठता धुआं भी आपके प्यार का ही होगा।

0: कैसे तेरा,
1: जब खुदा किसी को बनाता है ना तो उसमें कुछ खास बात होती है, लेकिन खुदा ने अदा को बनाया इसीलिए वो खास बात खुदा में है।

मैं कुछ भी कर लूं, तुम कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करना चाहती, और तुम कुछ भी कर लो, मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकता।

0: और मैंने दिल्ली बिफोर इन मैसेज की पीएसएम एआईन डीएफएम नोदी के मे पेज हिमें युतिराफ फोनवाफवा मैसेज मुली आइला के रूह कमगवी लोबिवा मामा वाकिवे दियाथा फस सहर वेगिन देरवेस हितुग फिलागे नुगो सुरी फुं हंदान तके
1: मामा नियाविता मिहार फस सहर वे एकम को मुली आइलांग आसवावा फळुकम आदिवेस एवेस बदलनादे मामा के आहार मेंगे मुली आइला के रूह कोम्मे हुकुर दुआह को मुली आइला एत्तमवा मैकंड सबब के मामा गुला आदेश को गनमेस एमें एत्तन कुराने मामने तुमु मेद आइला गे मीहुं दिमावणी वेस वरम मदु मामा के हदरिंगे हुरिहा मामदरिना मुनि मामदरिन देके इंतिहाय लोबिवि आदि एमें गे वेस लोबि इंतिहाय लिबुनु नमूना मामाय अल्हम्दुलिल्लाह एमें वेस मामा वरन हियो नमेस मामगे एमें फाउ हतर मस्दो हॉस्पिटल का हेद कुरिरु मामा गातन एदेवे वरन नुदेवन कमगे हितामा मिफसहर वीरवेस अहरिंगे हितुन नुफिला हितन अरा कोम्मे दुआ को देवन नमे मियद तियकुरिंग गातु का बुनेलन ओति लोबवा मीहुना एकीगा वीहावेस किनवगु थेद कुराशे
0: आइला गे मै तंबु वाकिवेगें दियुमकी मुळि गेतिरेंगन फळु कमे फस सहरवियस आदि फंसा सहरवियस फिलागिन दाणि हदान तके नु आदि फळुकमे विस्नु मामगे फहु दुस्कोळु गातुगे किने नुहुरे वुनकमगे हिताम हितु को इन्नमवेस मामगे लोबी के सबबुं मुळि आइलागे हितुग मामेटका ओइ गदरा लोबी मियदु स्थिति हम एगोतुग कोम्मे हुकुरु दुहाकु एत्तमवी हदान तका मामा दरीन दिन ओगा तेरी कमकी मुले आयला के तेरे का अबदर टका पिंवर नेगी फवा हंदान तके

0: ಅಲ್ಲಾವಾ ಎಂಬೆ ಫುರತಮ ಕಿಯಾಫವನಿ ನವಾರ್ಸ್ತೇಕ ಹದ್ದಿ ಹಣುವವನ ಆಹರು ನುಸ್ರತ್ ಫಾತಿಹಾಲಿ ಖಾನ್ ಫುರತಮ ಫಹರಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕುರಿದ ತುರುಗ ಮಿ ದತುರಕಿ ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ಗೆ ದೌವತಕ ರಿಷಿ ಕಪೂರ ನೀತು ಸಿಂಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾವೆನಿಗೆ ಹಫ್ಲಾಗ ಬ್ಯಾವಿರುವ ಕುರಿದ ತುರೆ ಎಂಬೆ ಫುರತಮ ಮಿ ಲವ ಕಿಯಾಫವನಿ ಮಿ ಹಫ್ಲಾಗ ಲವೇಕವರ ಬೊಡ ಮಿ ಕವಾಲಿಯೇ
1: लोग ये समझते हैं कि इस गाने को मीरा बाई ने लिखा है शायद इसलिए क्योंकि इस गाने का जो टोन है वो एक भक्ति का टोन है और अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर देने वाला टोन है जो कि मेनली मीरा बाई का राइटिंग स्टाइल था बट आपको ये जान के हैरानी होगी कि इस गाने को लिखा है एक पाकिस्तानी पोएट और लिरिसिस्ट ने जिनका नाम था तुफैल होशियारपुरी और इसको कंपोज किया है नन अदर देन नुसरत फतेह अली खान ने उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि नुसरत जी ने पहली बार इस कव्वाली की पब्लिक लाइव परफॉर्मेंस दी थी ऋषि कपूर और नीतू कपूर के संगीत पे वो पहली बार इंडिया आए थे इस ओकेजन पे राज कपूर जी ने उनको इनवाइट किया था अपने बेटे की शादी में और उन्होंने इस ओकेजन को चूज किया इस कव्वाली को पहली बार परफॉर्म करने के लिए एंड आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस टाइम पे ऑडियंस कितनी

0: कवर वर्जन तो लाखों आपको YouTube पे मिल जाएंगे। नुसरत जी के जो नेफ्यू हैं राहत फतेह अली खान, इन्होंने भी इसका एक कवर वर्जन किया है एज अ ट्रिब्यूट टू हिज अंकल।
1: मी लवा के कवर वर्जन तवारा किना एगोतुं एम फाहक कोल्लेवे एक कवाय की राहत फतेह अली खान के वर्जन।